तिस कुल नहीं जाती। जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। गौड़ी महला पंजवां।

मंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृद्ध संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो दर्श हर रायो नानक शरण तुहार।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

निमख सिमरत साधिय कलमल है दहता शुद्ध करता दिन सुरैन अराधो बिनवंत नान।

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको रव।

या जुग मह एक है कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना, देवनहार मन है बिसराना, कार हो कृपा जिस है गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक

कहो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यो या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक कह हाथ जित जित लाभ हो।

पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ दे कल युग मह पाया फिर या अवसर चरै ना हाथा नाम जप

अखर महंत्र पवन प्रवत हरे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा,

नमः सद्गुरु ए नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधाखियर कीने राम नाम एक आखियर।

देख अनेक अग्न नहीं बुझाए, कोट उपाव दरगहा नहीं सिझाए, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हरका नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सोना।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन्तु साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझह प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद

तिसह त्याए सदा मन अंदर, जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरहु तिस रसना, जिह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई है ध्यावन जोग, जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहि।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कै जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास।

अष्टपदे मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एकै भगवान जिसका दिया रह अघाय बहरना तृष्णा लाग आए मारे राख को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका

तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल महे आप अनेक जुगत रथ थाप ओ थाप अविनाशी नाही किश खंड तारन तार रहो ब्रह्मांड।

मन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थम मन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुरचरण लगत निस्तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रगास।

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार एहु कछ ना दृष्टेता पापुन तब कहते होता। जब तहरी आपन सुन समाध तब वैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछ।

सृष्टम। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।

साहिब सच है सच सच्चे भावे जो तुद सच सलाहंदे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे तिन के मुख दर उजले जिन हर हिरदय सच्चा पावे कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हिरदय।

अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया सतगुर की रीस है।

सेवा करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगै ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे, भगत मुखै ते बोल दे, से वच

करे हर वस्त संभाले, नाम निधान हर बन जीए, हीरे पर वाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे, से मूड़ बेताले, से उजड़ भरम पवाई है, ज्यों चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया।

कह है बड हम ही जिस है बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है सतगुर मिले अंधेरा चूक है इन विद मानक लही है।

जहे अबोल तहमन ना रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई। अलह लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार। बटक बीज महराव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार। अलह लहंता अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद। उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग अशेद।

हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे

आओ बहुते औगुण कु कह कोई जांत सिपावै बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखां तहें एको सोई।

अनल शोभा कंठ फूल प्रत्यखी दृष्ट पाए सगल निधान दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

सम्हारे। एको एक आप एक एक है सगला पासारे। जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

रहाओ। निकट आन प्रैसेज तरी कान कढ़न ते शूत परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बिनोदी खसम हमारा।

आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

कब हु न हार है हर हर गुण सार है। तिन जम नेड़ न आवै जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावै। गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर न

अर्थ ले हो भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे अपना भाणा तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।

अमृत शकशके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत।

शिंगार हबरस अर्पिए, जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए, तह साध संग ना डरपिए, कर कीरत गोविंद गुणिए, सगल पराश

अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध समरथ सुआ।

बिस्त छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद ना बरखे, नाद कहां जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर मा।

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तिरंग अरसेन बुद बुदा, जल ते भिन्न न होई। इहो प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ, सत

जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त पय जोत समा

गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा। सतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं

परणम पज शरण सतगुर ऊपर है हर नाम रज रमणम गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं भय पाए भगत तार।

साह साह सदा संभालिए आपे बख्शे करे रजाए सेई ना चहे जो तुद पावे जे गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से।

जा कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध ममता मोह सो बंधना पुत्र कलत्र सो तंद जह

खंडन। आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन। आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन।

निर्मल मन करण कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा। वडहंस

सदा सुख बसहिं, सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

अवर न पाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सो पाखिया।

सुख होई गुरजेवड गुरजेवड दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा।

समत कर जाने सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम सब बिन से हो मैं पापा राम जप हर हर।

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रथ जगत सगल देहथा राम समरथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हौ कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

बयाण ज्योतिष पावे समरथ सोचिए हिलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बनजारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस्चारो, गुण छोड़।

मिलहै जे सतगुर लागह साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सचराती सच्चे शब्द सदा सुख पाए।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

पदे अपना कर मूस्त राख न सा कहें की पर कर जोहन लागा कर दर राख है जे रस चाख है जो

जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलताओ ठाक रखो कर अपने गुर मिलिया ए मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो।

सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंध कमल बिगसया देखो अचरज भया।

रहाउ। कस कुंकम चंदन गारिया, बिन नैनों जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया। जाच

दया पिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म।

सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पहगी।

हर के संत जपहो हर जपना, हर संत चलाए हर नाले, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली, हर हर जपन।

हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अगन बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख।